0: सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.
1: It's 19 hours 47. Yes, and you're still locked on to Mirchi Masala right here on 98 number 1.

सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे।